रब रया हम के जी सब में रब रया बस गई सब रात बराई जब दे साल संग तो माई ना को भाई नहीं बिगाना सगल संग हम गा बने आई जो प्रभु की नो वरमान हो मस मस साधु दे भाई सब में रब रया रब रया रब रया हाँ प्रभु एक है सब में रब रया

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सदल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला।

ऐसे गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेले सरन हवंदा गुर के बचन उचार के धर्म साल दी सुरत करंदा साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा शंका मनो मिटाए के गुरसिखां दी सेव करंदा किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा गुरसिखां नू दे कर पिछों बचिया आप खवंदा कली काल परगास कर गुर चेला चेला गुरसंदा गुरमुख गाडी राह चलंदा।

0: जग भात सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ बाबा जी असी भी उन्हें दर्शन करन आया किथे मिलेंगे
0: सच खंड विखे
1: सच खंड
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर साडे पागा च उन्हें दर्शन नहीं निराश ना हो बेटे उन्हां दा रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख साहब दी सेवा करा रहे ने
1: तुंग पिंड
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
0: तन गुरु रामदास
1: किन्नी सोनी था है तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान नू लेनी हूं नाले पता कर लांगे तुंग पिंड किन्नी दूर है अच्छा
0: छेती आना तन गुरु रामदास

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ले, माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

गुरु दी खुशी दी मोर लग गई है किवें पता लगेगा। बड़ा डूंगा सवाल बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणां च रखिया। गुरु गोबिंद सिंह जी जवाब देंदे खड़े खड़े, कहंदे दीप सिंह थोड़ी जी दिमाग विच रखना जी। दीप सिंह वैसे गुरु घर दयालू है, भावे थोड़ी भावे बहुती घालना किसे दी गुरु बिरथा नहीं जान देंदा है जी। पर जेड़ी तू गल पुछी ना पूरी खुशी दी मोर प्रमाण हो गई, थोड़ी बहुत घालना एक दिल नहीं भन्ने घाले बिरथा नहीं जान। पर जेड़ा सवाल तू कीता है कि सेवा सिमरन ते गुरु दी खुशी दी मोर लग गई किवें पता लगेगा। दीप सिंह एदियां तीन निशानियां, जिदी सेवा सिमरन दे उत्ते गुरु दी खुशी दी मोर लग जे ओदी पहली निशानी है उस बंदे दे अंदर गुरु वाले गुण आने शुरू हो जाणगे। गज गया को सतनाम। गुरु वाले गुण केड़े होते हैं? निर्वैरता, धीरज, संतोख, सह। हा हा हा क्या बात है। ये निशानी जे प्यारे हो जिस दिन तुहाडे अंदर ये गुरु वाले गुण आने शुरू हो जाणगे समझ लो साडे कीते ते गुरु दियां खुशियां दी मोर।

0: साध के संग सोबा सुर सेवा बाणी कह रही है कहंदे रंगियां दा संग ते किते इतरां दा वी भुलेखा पै जे ओ धर्म राज वी सेवा करदा को सतनाम
1: इशारा लेना अंतरयाम दा हिरदे नूं कुंजी मिल जांदी अंतरयाम दा सस्ता सत्कार ना करना आ रही
0: कुदरती बाबा कुंदन सिंह जी का भी बरसी का दिन लंघ के गया तुहाडे अमृतसर दे जेड़े हरिमंदर साहब सवैये पढ़ते अखीरला सवैया जेड़ा पढ़ते भाई अवतार सिंह जी हम अवगुण परे गुण नहीं टैलीविजन सुनते इन्हों का परिवार गया नानक सर बाबा कुंदन सिंह जी को बाबा जी चोला बदल गए ओ तो पहला बचन है जो कमरे च गए जी भुगते तो बाबा जी

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा है, रात पैण लगदी है, तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हैं। इसे तरह ये संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मा दा खटिया खांदा खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा है मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया है, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलणे बनाए हुंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा, मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया। जिन्हां ने तां भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खटिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल की चै दोस्ती, सब जग चलन हार किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे, पर ओ तां सब तो दुखी है। हो सकदा महल माड़ियां विच रहण नाल कोई सुख प्राप्त होवे, ओ भी नहीं है। हो सकदा चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहनन नाल सुख मिल जाए, ओ भी नहीं है। क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगती विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चलनहार।